0: Autocrats are getting more powerful every day. That means more censorship, more surveillance, and less freedom to speak your mind. News Focus checks it out in detail, independent and uncensored. Find out what's behind the headlines. Watch News Focus, only on DW.
1: Maps help us understand the world. We just need to know how to read them. Crises, conflicts, and their histories. Mapped Out brings maps to life and helps you make sense of our world. Mapped Out by DW.
2: उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी, मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है. फिर मैं एक दफ़ा फिर से मेरा जुनून ताज़ा हुआ, फिर से मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया.
1: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be.